मालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्ली तव समे गृहे निच देवी मातरम् श्रियं वासय मे कुले आर्द्राम्बु

श्रोताओं सुनते हैं वसंत देव की गीत रचना, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और स्वर है पंडित राजन मिश्रा और अनुराधा पौडवाल का।

0: भक्ती सुधा आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: आइए सुनते हैं श्रीनिवास खड़े जी के संगीत निर्देशन में गुरु नानक जी की भक्ति रचना। इसे गाया है पंडित उल्हास कशाळकर ने।

समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।

घर अंगन लागे सोना, तेरी माई पी परदेश गान केनो, घर अंगन लागे सोना। इट्स स्टोरी ऑफ ऑल आवर डेली लाइफ।

ख्याल में शब्दों की क्या महत्व है, धन जोवन, धन और जोवन। तो गुरु जी की बंदिश है, गुरु ज्ञान प्रकाश घोष जी की, कह रहे कि धन जोवन नदी नाव संजोग, जैसे नदी के साथ नाव का संपर्क है। धन जोवन नदी नाव संजोग, कहत मुनि ज्ञानी, जग में सब करत अपनी अपनी करनी।

0: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीतबद्ध किया है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने।
1: ओम गणा गणपति

0: भक्तिसुधा आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: आइए सुनते हैं श्रीनिवास खड़े जी के संगीत निर्देशन में गुरु नानक जी की भक्ति रचना। इसे गाया है पंडित उल्हास कशाळकर ने।

श्रोताओं सुनते हैं वसंत देव की गीत रचना, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और स्वर है पंडित राजन मिश्रा और अनुराधा पौडवाल का।

समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।

समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।